0: कि एक समय तम बहे बाल में माता से तथ्यम फल नो नियो बोले अफेट जो वाचा साउदी बाकुंडा से नियो पूजा बत्ती में पिसल
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.